0: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
1: किया।
0: कभी किसी को दिल दिया?
1: किया।
0: मैंने भी दिया।
2: DJ Ashley.